सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की षष्ठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले ज्ञान ज्योति।

जी हाँ, संत जन कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना की जाए ना, तो भगवान हमारे सगे संबंधियों से भी बढ़कर हमारे साथ होते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का अटूट प्रेम और अटूट संबंध माना जाता है। इस संबंध से अतिरिक्त और कोई भी दुनिया में प्रगाढ़ संबंध नहीं है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो केवल और केवल भगवान ही हमारे साथ होते हैं। हमारे कठिन समय में हमें कठिन परिस्थितियों से उबार कर ले आते हैं। इसी के संदर्भ में एक लघु कथा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके पास अत्यंत सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति थी, जिसे वे सदैव अपने साथ रखते थे और बड़े प्रेम तथा श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते थे। वे ठाकुर जी को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जब संत ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने ठाकुर जी को सावधानी पूर्वक अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ भक्ति कथा और हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सभी संत उतरे और संगत सत्संग की मस्ती में वे संत इतने लीन हो गए कि अपना झोला ट्रेन में ही भूल गए, जिसमें उनके प्रिय ठाकुर जी रखे हुए थे। काफ़ी समय बाद जब सभी संत आश्रम पहुँचे तो भोजन प्रसाद का समय हुआ। तब उस प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा, परंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये देखकर वे संत अत्यंत व्याकुल हो उठे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी के वियोग में उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना भी त्याग दिया और अत्यंत दुखी होकर अपने प्रिय भगवान को पुकार पुकार कर रोने लगे। अन्य संतों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि वे उन्हें नए सुंदर और चिन्हों से अंकित ठाकुर जी दे देंगे, परंतु उस संत ने विनम्रता से कहा कि उन्हें केवल वही ठाकुर जी चाहिए जिन्हें वे वर्षों से प्रेम पूर्वक सेवा करते आए हैं। तभी एक संत ने सुझाव दिया कि संभव है कि ठाकुर जी ट्रेन में ही छूट गए हों। ये सुनकर सभी संत तुरंत स्टेशन पहुंचे और स्टेशन मास्टर को पूरी घटना बताई। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन का नाम सुनकर आश्चर्य से कहा कि वही ट्रेन कई घंटों से स्टेशन पर खड़ी है और किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही। इंजीनियरों ने कई बार जांच की, परंतु कोई खराबी भी नहीं मिली। ये सुनकर संत ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि अब ट्रेन अवश्य आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके बिना उनके प्रिय ठाकुर जी भी कहीं नहीं जा सकते। संत तुरंत ट्रेन के डिब्बे में गए और देखा कि ठाकुर जी वहीं उसी स्थान पर सुरक्षित रखे हैं जहां उन्होंने उन्हें रखा था। अपने प्रिय ठाकुर जी को देखकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए और भाव विभोर होकर उनके हृदय से यही आवाज़ निकली कि हे मेरे प्रियतम, जिस प्रकार मैं आपके बिरह में दुखी था, उसी प्रकार आप भी मेरे बिना कहीं नहीं गए। जैसे ही संत ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतरे, उसी क्षण ट्रेन स्वतः आगे बढ़ने लगी। ये अद्भुत दृश्य देखकर ट्रेन चालक, स्टेशन मास्टर और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, जब उन्होंने संत और भगवान के इस प्रेम की कथा देखी तो वे सभी भाव विभोर हो गए और उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी जागृत हो गई। जी हाँ, तभी तो कहते हैं कि सच्चे भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत गहरा और अटूट होता है। जब भक्ति सच्चे मन से, सच्चे प्रेम और विश्वास से की जाती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं
और कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। जी, ये थी आज की लघु कथा। और अब भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में संगीत की तरफ बढ़ते हैं। और आज शनिवार के दिन दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करने से शनि देव की कृपा दृष्टि भी हम पर बनी रहती है।

जी हाँ, अगर हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे ना, तो हमारे सभी कार्य भगवान ही सिद्ध कर सकते हैं। अन्यत्र और किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे या हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सके। तभी तो भक्तजन कहते हैं कि छूट जाए हर साया, पर तेरी परछाई साथ रहे। बस इतनी इच्छा है मेरी, मेरे माधव मेरे सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे। और वैसे भी जिसे हर परिस्थिति में हरि की कृपा दिखे, भला उसे हरि कैसे न देखें, ये तो संभव ही नहीं है। तभी तो भक्तों को जब ईश्वर और ईश्वर की छवि मन में भाने लगती है ना, तो भक्तों का जीवन सफल होता है। आइए हम भी प्रयास करते हैं भक्तों की श्रेणी में अपने आप को खड़े करने का।

सांवरिया मन भाया रे। जी हाँ, जिसे सांवरिया, जिसके मन में, हृदय में उनकी पावन मूर्ति स्थापित हो जाती है ना, उसे फिर किसी भी अन्य रिश्ते या संबल की ज़रूरत नहीं पड़ती और विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि हर परिस्थिति में मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। भक्तजनों का विश्वास यही होता है कि जब उनकी आंखें आंसू से भरी भी हो ना, और फिर भी होंठ कहे कि भगवान मेरे साथ हैं और वो मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, तभी सच्ची भक्ति मानी जाती है। क्योंकि भक्ति में मन की एकाग्रता के साथ साथ भगवत कृपा के प्रति मन में विश्वास की दृढ़ता भी होनी चाहिए, तभी प्रभु की प्राप्ति संभव होती है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। इसी क्रम को आइए अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। इसी के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए अब हम आपको अवगत करवा देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों तथा उनके प्रसारण समय से। सबसे पहले जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा 8:30 पर। प्रातः 8:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का विषय रहेगा फुलबहरी यानी विटिलिगो और गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याएं तथा उनका निदान। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में होंगी डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रातः 10:05 पर हमारी आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों का पुनर्वास। एक सितारा कार्यक्रम प्रातः 10:15 पर तथा 10:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंग। दिन में 12:00 कार्यक्रम देवधरा के गीत तथा 12:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युव मंच। 6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने का। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी साय 6:30 पर। 7:05 पर कार्यक्रम भक्ति संगीत तथा 7:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम रौनक का गराएं दिया। रात्रि 10:00 कार्यक्रम रंगे गजल तथा 10:30 पर समय रहेगा रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रातः 9:30 से लेकर 10:00 तक, दिन में 11:05 से लेकर 12:00 तक, 1:00 से लेकर 2:00 तक, 2:30 से लेकर 3:00 तक, 3:10 से लेकर 4:59 तक, रात्रि 8:00 से लेकर 8:45 तक तथा 9:15 से लेकर रात्रि 10:00 तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले समाचारों तथा कार्यक्रमों की समय सारिणी इस प्रकार रहेगी। प्रातः 6:55 पर संस्कृत, 7:00 हिंदी समाचार, 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, प्रातः 10:00 हिंदी समाचार, दिन में 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 5:00 हिंदी समाचार, 5:10 पर कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का एपिसोड 7, शाम 7:00 हिंदी समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 तथा रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर, दिन में 11:00 तथा 3:00 प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिले की चिट्ठी अथवा सामयिक चर्चा, शाम 6:00 तथा 7:45 पर प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत तथा 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्, प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयन्ती राष्ट्रिय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं।
5: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
6: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
5: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
6: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
7: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 7:06 और पूरे 27 सेकंड्स हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त अंजू शर्मा, और आज भी बहुत सारी जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं आज का विचार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किसी ने सही कहा है कि ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उनकी कविता से हमें बहुत बड़ा संदेश और जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हों, नाविक की कार्यकुशलता क्या, यदि लहरें सब अनुकूल न हों, पथ में यदि शूल न हो तो फिर पथिक की एकाग्रता क्या, यदि मार्ग बिल्कुल सीधा हो तो फिर राही की चतुरता क्या, जो हंसकर सहते हैं विपदा वही तो जग में जीते हैं, सुख के प्यालों को छूते नहीं दुखों के विष को पीते हैं, होकर निराश मत बैठो तुम, ये जीवन एक समर ही है, जीत उसी की होती है जिसके हाथों में खंजर है। जी हाँ, दिनकर जी कहते हैं कि जब नाव के सामने विपरीत धाराएं और ऊंची लहरें ना आएं, तब तक किसी नाविक के धैर्य और उसकी कुशलता का पता नहीं चलता, और जीवन में यदि कांटे या फिर हम कह सकते हैं कि परेशानियां ना हों तो राही कभी अपनी एकाग्रता और सूझबूझ का इस्तेमाल करना नहीं सीख सकता। तभी तो कहते हैं कि जब भी जीवन में निराशा या कठिन समय आए, इस तरह की पंक्तियां हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं और हमें सिखाती भी हैं कि मुश्किलों से भागने की बजाय मुस्कुराकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि असली नायक वही होता है जो संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोता और निरंतर अपने कर्म पथ पर चलता जाता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
6: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
7: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
8: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: जी श्रोताओ, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसे हमने लिया था फिल्म आया सावन झूमके से, और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और साथी। कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में अब वक्त है आपको आज की जानकारी देने का, और सबसे पहली जो जानकारी है वो है आज के इतिहास की।

जी श्रोताओं, आज 27 जून है और 27 जून किसी वर्ष में दिन संख्या 178 होती है। भारत और विश्व इतिहास में 27 जून का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। आज हम आपको ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। कुछ प्रसिद्ध हस्तियां जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी उनकी भी बात करेंगे, और साथ ही बात होगी आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में। सबसे पहले जानकारी, आज यानी 27 जून के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।

जी श्रोताओ, समय की रफ्तार में पीछे मुड़कर देखें और इतिहास के पन्नों को अगर खंगालें और बात करें सन 1693 की, तो महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मर्करी लंदन में आज ही के दिन यानी 27 जून के दिन प्रकाशित हुई थी। कनाडाई संसद ने सन 1946 में कनाडाई नागरिकता अधिनियम में कनाडाई नागरिकता को परिभाषित किया था आज ही के दिन। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सन 1950 में अपनाया गया था। ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने सन 1957 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी। G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सन 2002 में सहमति हुई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर सन 2003 में प्रतिबंध रद्द किया गया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सन 2004 में जीपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ब्रिटेन ने सन 2005 में भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। गुएन मिन्ह ट्रेट वियतनाम के राष्ट्रपति सन 2006 में चुने गए थे और जेम्स गार्डन ब्राउन ने सन 2007 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला था। भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रॉय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने सन 2015 में अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला लिया था।

जी श्रोताओं, आज के दिन जिन चर्चित व्यक्तियों ने जन्म लिया था उनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म सन 1838 में 27 जून के दिन हुआ था। जर्मनी के मशहूर गर्भ विज्ञानी हैंस स्पेमैन का जन्म सन 1869 में हुआ था और तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन का जन्म सन 1922 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म सन 1939 में हुआ था। भारतीय पत्रकार पूर्णिमा वर्मन का जन्म सन 1955 में हुआ था। जी श्रोताओं, उड़न परी के नाम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म सन 1964 में हुआ था। रूस की महिला टेनिस खिलाड़ी स्वेतलाना का जन्म सन 1985 में हुआ था। आज के दिन जो महान हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कह गई थी उनकी अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सिखों के महाराज महाराजा रणजीत सिंह का निधन सन 1839 में हुआ था और भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का निधन सन 2008 में हुआ था।

आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की अगर हम बात करें तो आज हम मना रहे हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के इतिहास की। अब कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख करते हैं संगीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
9: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: जी श्रोताओ, इस गीत और संदेशों के बाद अब हम आपको जानकारी देते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की।

सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र पर दर्ज होंगे 6 शहीदों के नाम। जी हाँ, पहली बार सामने आए 6 शहीदों के नाम, इसलिए आज मास्ट हेड से ऊपर उनके अदम्य साहस की कहानियां हैं। जी हाँ, पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की ओर से मई सन 2025 में चलाए ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए थे। करीब 13 माह बाद पहली बार इनकी पहचान सार्वजनिक हुई है। इनके नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र की ग्रेनाइट शिलाओं पर अंकित होंगे। सन 2025 के दौरान विभिन्न सैन्य अभियानों में शहीद हुए सैनिकों की सूची के साथ ही इनके नाम भी मेमोरियल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 6 शहीदों में से 5 थल सेना और 1 वायुसेना से हैं। राइफलमैन सुनील कुमार मरणोपरांत वीर चक्र और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मरणोपरांत वायुसेना पदक से सम्मानित किए गए थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई सन 2025 को शुरू हुआ था और भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ढांचों पर हुए हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे और इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और गोलाबारी शुरू कर दी थी। इससे 4 दिन सैन्य टकराव चला। पाकिस्तान स्थित कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही के बाद दोनों देशों में DGMO के बीच बातचीत हुई और 10 मई को संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। एक अन्य खबर के अनुसार कक्षा 7 से 9 के विदेशी भाषा वाले छात्र 10वीं तक यही पढ़ सकेंगे। जी हां, CBSE ने कक्षा 7 से 9 तक के उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने 3 भाषा नीति के तहत 2 विदेशी भाषाएं चुन रखी हैं। बोर्ड ने पिछले कल यानी शुक्रवार को ये स्पष्ट किया कि ऐसे छात्र कक्षा 10 तक अपना मौजूदा भाषा संयोजन जारी रख सकेंगे। मई में CBSE ने सर्कुलर जारी किया था कि 1 जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी और इसी के चलते अब ये नया कानून CBSE की तरफ से जारी किया गया है। ये अधिसूचना जारी हुई है और इससे पहले कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर पूर्व प्रभाव से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। NEET UG की अगर हम बात करें तो बैंक डिटेल्स सुधार के लिए 30 जून तक मौका। जी हां, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने NEET UG सन 2026 के अभ्यर्थियों को फीस रिफंड से जुड़ी बैंक डिटेल्स सुधार का एक और मौका दिया है। ये सुविधा अधूरे वेरिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए है। बैंक अकाउंट सत्यापन और सुधार विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। इस बीच रीटेस्ट की प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो गई है। अभ्यर्थी 28 जून तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

एक्सपायरी डेट 12 महीनों से ज़्यादा हो तभी विदेश से आ सकेंगी दवाएं। जी हाँ, विदेश से भारत आने वाली दवाइयों के आयात नियमों में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत विदेश से आयातित दवाओं की एक्सपायरी डेट कम से कम 12 महीने होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल 1943 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। जी हाँ, ये ड्रग रूल्स 1945 का संशोधन हुआ है। अभी तक नियम ये था कि आयात के समय दवाई की कुल शेल्फ लाइफ का 60% से अधिक हिस्सा बचा होना चाहिए। हालांकि बायोलॉजिकल दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा। इसका कारण इन दवाइयों की विशेष प्रकृति व सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बताए गए हैं और बताया गया है कि दवाइयों की बर्बादी कम हो और गुणवत्ता वाली दवाएं पहुंच सकें, इसलिए एक्सपायरी डेट 12 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी विदेश से दवाइयां आ सकेंगी। AI की नींव एक साथ मिलकर मजबूत करेंगे भारत और अमेरिका। जी हाँ, भारत और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक का आयोजन किया। वॉशिंगटन में आयोजित बैठक को भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन और अमेरिकी वाणिज्य उप अवर सचिव बिल गाइडेरा ने संबोधित किया। तीन साल में भारत होगा नशा मुक्त, रोड मैप तैयार, ड्रग माफिया पर करेंगे बेरहमी से वार। जी हां, नशीले पदार्थों की मांग घटाने, आपूर्ति नेटवर्क ध्वस्त करने और सहानुभूति पूर्ण रुख के साथ मादक द्रव्यों के जाल में फंसे लोगों के पुनर्वास के प्रयास करने जैसे कदम के साथ भारत ने नशे के खिलाफ जंग का अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कल यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया है, यानी ये 3 साल का एक विजन तैयार किया है। इसमें 3 साल में देश को नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नशे के खिलाफ देश की जंग में अगले 3 वर्षों को बेहद अहम बताते हुए श्री शाह ने राज्यों से कहा कि उन्हें आपसी तालमेल बढ़ाने, खुफिया जानकारियां तुरंत साझा करने और ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने पर विशेष ध्यान देना होगा और तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बना रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य। और साथ ही 4 स्तंभों पर आधारित है नशे के खिलाफ जंग, निगरानी महत्वपूर्ण। जी हां, पहला स्तंभ है इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशन। इसका उद्देश्य है कि खुफिया जानकारी के आधार पर पूरे नेटवर्क पर लक्षित कार्यवाही करके उसे नष्ट करना। दूसरा स्तंभ है प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल रणनीति के तहत उत्पादन स्तर पर ही मादक पदार्थों को रोकना। तीसरा स्तंभ डिमांड और हार्म रिडक्शन के माध्यम से अभियान को ये समाज, शिक्षा और पुनर्वासन से जोड़ना और आगे बढ़ाना है। और साथ ही चौथा स्तंभ है कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के तहत पूरे तंत्र को सक्षम, समन्वित, जवाबदेह व आधुनिक बनाना है। अगले साल समीक्षा सिर्फ संख्या के लिए ना करें बैठकें, भ्रम में ना रहें, क्योंकि इससे संबंध में गृहमंत्री ने कहा कि मौजूदा साल के लिए सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है, अगले चरण की कार्य योजना बनाने से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई भ्रम नहीं है, अगले साल हम ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई की समीक्षा करेंगे और आगे के कदमों की योजना बनाएंगे। इस साल का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है।
CGHS मरीजों को बड़ी राहत, अब मेडिकल बिलों की मंजूरी होगी आसान, अधिकारी खुद ही निपटा सकेंगे 50 लाख तक के क्लेम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी CGHS के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब मेडिकल बिलों के भुगतान, महंगे इलाज की मंजूरी और विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों का निपटारा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो सकेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिकारियों की वित्तीय मंजूरी की सीमा भी बढ़ा दी है, जिसमें हर छोटे बड़े मामले को मंत्रालय तक भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। नए आदेश के मुताबिक अब CGHS के अधिकारी पहले से अधिक राशि के मेडिकल क्लेम का निपटारा स्वयं कर सकेंगे। अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी जिला और जोन स्तर पर पहले साल लाख रुपए तक की मंजूरी देते थे, अब 15 लाख तक की मंजूरी दे सकेंगे।

0: हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, इस अंतराल के बाद अब समय है आपको कुछ ताज़ा तरीन खेल खबरों की जानकारी देने का।

जी हाँ, खेल खबरों की पहली जानकारी है फीफा विश्व कप 2026 की। जी हाँ, लगातार तीसरी बार नॉकआउट में जापान, अब ब्राजील से होगा सामना। एशिया की सफल फुटबॉल टीमों में से एक जापान ने स्वीडन के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ खेलकर लगातार तीसरी बार नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। टीम 1-2 के साथ अजेय रहते हुए राउंड 32 में पहुंची। वहीं स्वीडन भी अगले दौर में आगे बढ़ गई। इस मैच में पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद डाइजेन मायदा 56वें सेकंड में उन्होंने जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई। तुर्की से हारी अमेरिका पर रच दिया इतिहास। जी हाँ, मेज़बान अमेरिका ने तुर्की से 2-3 से हार झेली, लेकिन ग्रुप स्टेज में इतिहास रचते हुए नॉकआउट में पहुंच गया। अमेरिका ने पहली बार अपने सभी 3 ग्रुप मैचों में 1 से ज़्यादा गोल किए।

विश्व विजेता बनने के बाद पहले ही T20 मैच में भारत 34 रन से हारा, आयरलैंड के 182 रन के सामने टीम 18.5 ओवर में 148 रन ही बना पाई।

श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ए ने बनाए 452 रन और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की अगुवाई करेंगी चानू। जी हां, दो बार की चैंपियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। गेम्स 23 जुलाई से शुरू होंगी। मीराबाई 48 किलोग्राम कैटेगरी के भार वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी और उनके साथ सन 2022 बर्मिंघम खेलों की रजत पदक विजेता विंध्या रानी देवी दावेदारी पेश करेंगी।

जी श्रोताओं, तो ये तो थी कुछ खेल खबरों की जानकारी। अब इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में वक्त है आपको एक गीत सुनवाने का। जी हाँ, आइए सुनते हैं आशा फिल्म का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: जी श्रोताओ, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में वक्त है आज की विज्ञान चर्चा का। और आज की विज्ञान चर्चा की जानकारी जो है वो है डायबिटिक फूड से जुड़ी हुई। जी हाँ, डायबिटीज के मरीज अक्सर अपने पैरों की देखभाल करना कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे चलकर डायबिटिक फुट का खतरा हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के पैरों में होने वाले किसी भी जख्म, छाले, सूजन या इन्फेक्शन को डायबिटिक फुट कहा जाता है और मानसून के दौरान हवा में नमी और पसीने के कारण पैरों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खासकर सड़कों पर भरे गंदे पानी के संपर्क में आने से ये दिक्कत और ज़्यादा हो सकती है। सामान्य लोगों की तुलना में डायबिटिक मरीजों के जख्म बहुत देर से भरते हैं और इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। इसलिए आने वाले दिनों में यानी बरसात में पैरों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए। किन कारणों से बढ़ता है डायबिटिक फुट का खतरा? जी हाँ, नसों का सुन्नपन यानी न्यूरोपैथी होने से लंबे समय तक अनियंत्रित डायबिटिक पैरों की नसों को नुकसान पहुंचाती है। ये जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, इसमें पैरों की सेंसेशन कम हो जाती है, इसलिए चोट या घाव होने से मरीज़ को पता ही नहीं चलता और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा कि गंदा पानी और गीली त्वचा, लंबे समय तक गीले जूते मोजे पहनने से पैरों की त्वचा गलने लगती है। ऐसे में अगर कोई भी छोटी सी चोट भी लग जाए तो गंदे पानी के बैक्टीरिया तुरंत अंदर पहुंच जाते हैं और पैरों में सुन्नपन होने से पता देर से लगता है, जिससे समस्या बढ़ जाती है। और लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और टिश्यूज़ में शुगर का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। जख्म में ज़्यादा शुगर होने के कारण बैक्टीरिया और इन्फेक्शन वहाँ लंबे समय तक बने रह सकते हैं, इससे घाव भरने में समय लगता है। और डायबिटिक फुट से बचाव की गाइडलाइन में विशेषज्ञ कहते हैं कि संकेतों को अनदेखा ना करें, फुटवेयर का सही चुनाव करें, लाइफस्टाइल में सुधार करके शुगर यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और पैरों का चेकअप करते रहें। हफ्ते में 3-4 बार पैरों की जांच करें, बाहर से आने पर उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखाएं, तलवों को शीशे में देखें और किसी घाव या बदलाव पर ज़रूर ध्यान दें। अंत में क्रीम या नारियल तेल से मॉइस्चराइज भी ज़रूर करें। और अगर पैर के आकार में बदलाव, तलवों में कॉर्न यानी कुछ छोटे से मस्से या छोटी मोटी सख्त त्वचा, एड़ियों में दरारें, लालिमा या नाखूनों का सूखा टेढ़ा मेढ़ा और बदरंग होना दिखाई दे तो इसे नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि सही जानकारी ही बचाव कर सकती है। तो ये तो थी आज की विज्ञान चर्चा की जानकारी। जी श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
4: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
5: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
6: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
7: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
8: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
9: हमारे यहाँ टोटल कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
10: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केवो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों

0: Following the earthquake, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. With Suparna's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors united by shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA opened new frontiers for growth. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command, CENTCOM, said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran. The strikes came shortly after U.S. President Donald Trump told reporters at the White House. One will find out if there will be consequences for Iran's violation of the ceasefire agreement.
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three, at a ship, not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim al-Fikri said that Iran's response to the U.S. attack this time will be swift and decisive. In a series of posts on social media, al-Fikri said that Iran will choose the appropriate time and place to answer back. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah, halting all attacks and withdrawing from a southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as a first step towards restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital.
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India had seven different goal scorers in the match. Sukhjit Singh and Harmanpreet Singh turned the tide against Pakistan with a goal each in the second quarter before Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal found the back of the net to add four goals in the third quarter. Dilpreet Singh hammered the last nail in the coffin in the fourth quarter. India will now face England tomorrow. In the FIFA World Cup 2026, two-time World Cup champion Uruguay were knocked out of the tournament after losing 1-0 to Spain in the final Group H clash in Mexico this morning. With this win, Spain secured the top spot in Group H. Alex Baena scored the decisive goal in the 42nd minute for Spain. Two-time winners Uruguay became the highest-ranked side to crash out in the group stages. In another Group H fixture, tournament debutants Cabo Verde advanced to the round of 32 after a goalless draw with Saudi Arabia in the United States. Earlier, France defeated Norway 4-1 in the Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, United States today. Ousmane Dembele starred with the first hat-trick, helping France finish at the top of Group 1. In the other Group 1 fixture, Senegal thrashed Iraq 5-0 at Toronto Stadium in Mexico. The big win keeps Senegal in contention for a place in the round of 32 as one of the tournament's best third-place teams. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
4: Thank you, Abhishek. The India-UK Free Trade Agreement finds mention in most of the dailies. The Pioneer, quoting Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, says transformational growth, prime focus of India-UK FTA. Will implement UCC in Bengal, says Adhikari, notes the Tribune. Hindustan Times, in its editorial piece, Ram Temple case deserves honesty, writes that the government's handling of the allegations will determine the political and spiritual ramifications of this evolving saga. The paper writes, for centuries, Ayodhya has been the epicenter of faith for many Hindus who believe it to be the birthplace of Lord Ram. After the Supreme Court's landmark 2019 ruling concluded, the decades-long Babri Masjid Ram Janmabhoomi title dispute and paved the way for the construction of the Ram Temple, the recent controversy around irregularities in donations threatens to tarnish the temple's status. Australia eyes stronger social media ban for children, reports The Pioneer. NCERT drops French-Russian revolutions from class 9th books, informs The Tribune. And finally, Ireland script history with maiden T20 international win over India, reports The Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 58th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela. Sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत। मैं हूं आज समाचारों के साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य, सन 2028 तक पास करनी होगी परीक्षा। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टैट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। 31 अगस्त सन 2028 तक ये योग्यता हासिल करनी होगी। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने 25 जून को स्कूल शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। 29 मई को पारित समीक्षा याचिका के आदेश के अनुसार समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले समय सीमा 2 वर्ष थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों को टैट उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से जो काम कर रहे शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, टैट उत्तीर्ण ना करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा है। जिला उपनिदेशकों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्रमुखों को इसके बारे में निर्देश जारी किए जाएंगे। अब स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर दिखेगी विकास कार्यों की जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्कूल प्रभारियों को ये निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रस्तावित, प्रगतिरत और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का पूरा विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। साथ ही किसी भी कार्य में आ रही बाधाओं और उसके लंबित रहने के कारणों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। इस पहल को अपना विद्यालय कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत स्थानीय लोग, पूर्व छात्र, समाजसेवी, पंचायत प्रतिनिधि और संस्थाएं विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, खेल सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण और अन्य विकास कार्यों में सहयोग कर सकेंगे। अब 14 से 15 वर्ष की बेटियों को लगेगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ज़िले में चल रहे टीकाकरण अभियान में बदलाव किया गया है। अब केवल 14 और 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को ही HPV टीका लगाया जाएगा। इससे पहले 15 वर्ष 90 दिन तक की लड़कियाँ इस दायरे में थी। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को 3 माह का विस्तार दिया है। अब तक 1,442 से अधिक किशोरियां इस टीके का लाभ ले चुकी हैं। विभाग का लक्ष्य 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की कुल 2,967 लड़कियों का टीकाकरण करना है। हमीरपुर में जल्द लागू होंगी गृह कर की नई दरें। जी हाँ, शहर में जल्द ही गृह कर यानी हाउस टैक्स के नए स्लैब लागू किए जाएंगे। नगर निगम हमीरपुर ने इसके लिए सर्वे लगभग पूरा कर लिया है और अब सर्वे का सत्यापन किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक भवन की श्रेणी के अनुसार नया हाउस टैक्स निर्धारित किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के 4,402 भवनों का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 जून तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 जून की रात पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से 1 और 2 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी है। विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:35 हो चुके हैं और ये समय है आज के स्वास्थ्य चर्चा लाइव फोन इन कार्यक्रम का। श्रोताओं, हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि आज हमारा जानकारी का विषय है सफ़ेद दाग या फुलबहरी, जिसे विटिलिगो भी कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी देंगे और साथ ही गर्मियों में त्वचा के मुख्य रोग और उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, इस सब के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। ये त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और यदि आपका भी स्किन डिजीज़ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2231322 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। तो चलिए करते हैं आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी हाँ श्रोताओ, त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होता है और कोई भी भीतर की या बाहर की समस्या हो तो वो सबसे पहले हमारे त्वचा यानी हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देना शुरू होती है। और ये त्वचा इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर इसमें कोई भी समस्या आए तो ये आती तो जल्दी है लेकिन जाने में बहुत टाइम लगाती है। तो आज इसी से संबंधित हम अपने डॉक्टर साहब से बात करने वाले हैं, क्योंकि त्वचा सबकी सही रहे इसके लिए हर कोई प्रयासरत रहता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विटिलिगो यानी फुलवहरी यानी सफ़ेद दाग जो त्वचा के ऊपर पड़ते हैं इनके बारे में, और साथ ही कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन की बात भी की जाएगी। तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपका भी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 2231322 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
1: थैंक यू अंजू जी, मैं सभी श्रोतागणों को नमस्कार बोलना चाहूँगी और आज का ये टॉक स्टार्ट करना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, हम सभी जानते हैं कि दो दिन पहले हमने विटिलिगो डे यानी फुलबहरी दिवस मनाया, तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। इस बार की थीम क्या थी इस दिवस की, आप हमारे श्रोताओं को बताइए और साथ ही बताइए कि विटिलिगो होता क्या है।
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 25 जून को हमारा वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया गया, जिसकी थीम थी फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है कि जिस तरह की इस बीमारी के बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से इनके पेशेंट्स को देखा जाता है, हमें उससे आगे बढ़कर उनको स्ट्रेंथन करना है, उनके मनोबल को हमें बढ़ाना है। ये हमारा थीम था। 25 जून को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये माइकल जैक्सन जी की डेथ एनिवर्सरी है। और गौरतलब की बात यह है कि माइकल जैक्सन जी ने पूरी ज़िंदगी इस डिज़ीज़ को झेला, लेकिन फिर भी उनके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलत बातें बोली जाती थी कि वो खुद अपनी स्किन को ब्राइटन कर रहे हैं। और बाद में जब उन्होंने रिवील किया कि मुझे ये बीमारी है और इसी वजह से मेरी स्किन का रंग चेंज हो रहा है, तो इवन इतने फेमस पर्सनालिटीज़ को भी इसके स्टिग्मा से जूझना पड़ा।
0: जी हाँ, और ये बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, किसी को हो जाए तो लोग उससे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये विटिलिगो क्या है और क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो होता है, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कहने का मतलब है कि हमारे ही शरीर के जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं वो हमारे स्किन की चमड़ी की रंग बनाने वाली कोशिका, जिसे हम मिलानोसाइट कहते हैं, जो हमारे शरीर को रंग देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बीमारी में, ये बीमारी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ये केवल हमारी चमड़ी तक ही सीमित रहती है और कुछ एरियाज जैसे कि आईलिड्स या फिर हमारे जो हाथ हैं, यहाँ से पाँव से ये शुरू होती है और धीरे धीरे करके ये आगे फैलती है।
0: जी जी, और क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो यानी फुलबहरी होता है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में भी चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है या किस तरह से इसको लेना चाहिए।
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे पास बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे से पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे के शरीर पे एक सफ़ेद दाग दिख रहा है, क्या ये फुलबहरी है? तो मैं कहना चाहूँगी हर सफ़ेद दाग फुलबहरी नहीं होता, विटिलिगो नहीं होता है।
0: जी।
1: बच्चों में कई बार एलर्जीज़ की वजह से सफ़ेद दाग आते हैं या कुछ इवन फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी सफ़ेद दाग शरीर पर आना शुरू होते हैं। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इधर उधर लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या किया जाए, और कभी कभी तो गलत दवाइयाँ भी लगा लेते हैं। लेकिन मेरा सभी से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है, उसके लिए घबराएं नहीं, और अगर आप बहुत घबरा रहे हैं तो एक चमड़ी रोग के स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, वो आपकी सारी क्वेरीज को ठीक कर देंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अपने तौर पर किसी भी चीज़ को एज्यूम करना सही नहीं होता और इसको स्टिग्मा बनाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि एक जो हीनता की भावना है ना, उसका जब एक बार संचार हो जाए ना, तो इंसान जो है वो एंग्जाइटी और इस तरह के दिमागी प्रेशर के बीच में आ जाता है कि उसको या

0: कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है
1: जी।
0: कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि पहले ही फैमिली हिस्ट्री हो, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को विटिलिगो रहा हो, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है और फिर भी ये सफ़ेद दाग शुरू हो जाता है।
1: जी जी। और एक धारणा लोगों में आम तौर पर ये देखी जाती है कि मछली खाने से या दूध के साथ मछली का इस्तेमाल करने से या सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये समस्या आती है, तो इस चीज़ को आप कितना सच मानती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम एक ही बात को बहुत बार बार दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो सच लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन फूड या फिश खाने से और उसके साथ दूध का सेवन करने से या अंडा खाने से, दूध पीने से, इन सब चीज़ों से वुलबहरी होती है। इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बहुत सारी ऐसी चिकन की डिशेज हैं जो दूध में बनाई जाती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक मिथ है, इसका एक्चुअल सच से कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि डरे से हमें पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे के शरीर पर कहीं कोई सफ़ेद दाग है, तो क्या सिर्फ आप देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं या कुछ टेस्ट भी रहते हैं ताकि डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके?
0: मैम, वैसे तो ज़्यादातर हम देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चमड़ी की डिजीज़ेस हैं जो सफ़ेद रंग के साथ प्रेजेंट करती हैं, लेकिन हम अपने पढ़ाई के दौरान उन सभी डिजीज़ेस को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। तो केवल देखने से भी हमें पता चल जाता है। कभी कभार कुछ एग्जामिनेशंस होती हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं वुड लैम्प एग्जामिनेशन, वो भी किया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है तो हम चमड़ी का टुकड़ा लेकर उसकी जांच भी भेजते हैं, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम केवल देख के ही बता सकते हैं या थोड़ा वेट करके देख के कि दवाइयों से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, इन्हीं चीज़ों से हम बता सकते हैं कि जो निशान है वो विटिलिगो है या किसी और चीज़ का निशान है।
1: जी। और डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये बीमारी अगर एक बार हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी को दाग पड़ा है और इनिशियल स्टेज में ही वो फौरन अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो क्या वो दाग वहीं रुक जाता है कि ये वो बढ़ता ही रहता है?
0: इसके बारे में इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं बताना चाहूँगी। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। प्रोग्नोसिस का मतलब कि बीमारी कैसे आगे बढ़ेगी, गुड का मतलब है कि नहीं बढ़ेगी, बैड का मतलब है कि बढ़ सकती है। अब मैं कुछ बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं चोट लगती है जो सफ़ेद दाग से ठीक होती है। अगर किसी में ऐसा हो रहा है तो वो एक बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। वैसे ही अगर जो फुलबेरी का दाग है उसमें काले बाल की जगह सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हो जाए तो वो भी एक बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। कुछ तरह के विटिलिगो, जैसे मैंने बोला आँख के अराउंड या हाथों पे आने वाले, जहाँ पे बाल नहीं है, क्योंकि अब जो रंग बनाने वाली कोशिका है वो वहाँ है नहीं, रंग आएगा बालों से, तो ऐसी जगहों पे अगर दाग आ जाए जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे भी हमें ठीक करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो पहले से, तो ये सारे जो मैंने आपको बताए ये बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। अगर ये हैं तो चांसेस हैं कि डिजीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो चांसेस हैं कि वो निशान जो है वो वहीं तक सीमित रहेगा और ठीक हो जाएगा।
1: जी, क्योंकि हम ये पहले भी कह चुके हैं कि हमारी त्वचा ही हमारे शरीर का बाहरी आवरण है और पर्सनैलिटी जो है वो सामने देखने से त्वचा के ही रंग के ऊपर बहुत निर्धारित करती है। लेकिन वही बात है कि जैसे इस बार का हमारा थीम भी है कि फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ, तो अगर किसी व्यक्ति को फुलबहरी हो जाती है, वो आपके पास आता है, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ती होगी?
0: बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें विटिलिगो के पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो है कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी के साथ बाकी साइकेट्रिक बीमारी जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी बहुत कॉमनली होते हैं। इसका कारण यही है कि इस डिज़ीज़ के अराउंड स्टिग्मा बहुत है, तो पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब मुझे एक अलग तरीके से देखा जाएगा, मुझसे अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा, मुझे जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। इवन छोटे छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आएगी, जो कि आज से 15 या 20 साल बाद होनी है।
1: जी।
0: तो वो पहले ही वो एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। इवन पेरेंट्स

0: भी स्टार्ट हो जाती है और फिर बच्चा भी उन चीज़ों को देखता है तो उसको भी ये चीज़ें फिर अफेक्ट करना शुरू कर
1: करती हैं।
0: देती
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल, जी हाँ। और एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि हमने पहले भी कहा कि लोग उससे दूरी बनानी शुरू कर देते हैं जो इस तरह के दागों के साथ बच्चे या बड़े होते हैं। तो क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है? छूने से एक दूसरे को हो सकती है?
0: बिल्कुल भी नहीं,
1: जी
0: विटिलिगो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कई बार हमने ऐसा सुना है कि उन लोगों को बोला जाता है कि अपने दाग छुपा के रखो, अगर हाथ पर है तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनो,
1: जी
0: आप स्विमिंग नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये सब मिथ्स हैं। विटिलिगो छूने से नहीं फैलता है, वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। तो
1: जी
0: इसका भी ये भी हमें खंडन करना चाहिए इस धारणा का कि छूने से फैलता है।
1: जी हाँ। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, लेकिन अगर हो तो उसको सहयोग की ज़रूरत ज़रूर होती है जो परिवार और समाज की तरफ से दिया जाना ही चाहिए। तो ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथ में कार्यक्रम में थोड़ा सा जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो माहौल भारी हो जाता है, लेकिन एक श्रोता फ़ोनलाइन पर इनसे बात करते हैं। आगे की बात इनसे बात करने के बाद करते हैं। जी, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की आज जो ये जानकारी है इसमें आपका बहुत स्वागत। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
2: मैं पाल सिंह बोल रहा हूँ, गहोत्तमा से।
1: पाल सिंह?
2: हाँ जी
1: जी, पूछिए आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं पाल सिंह जी।
2: मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को वही जो बोल रहे हैं ना कि निशान पड़ते हैं फेस से, वो है एक तो मतलब आज कहीं कम से कम 10-15 साल हो गए उसको पड़े हुए, तो दवाई तो बहुत ली पहले पहले उसके लिए, तो उसके बारे में मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे, पता नहीं क्या चक्कर है, काहे का हो सकता है फिर वो। मैंने भी इसलिए फोन पूछ लिया आपको।
1: जी जरूर, आपकी जानकारियों के लिए ही डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। जी
0: हाँ जी, तो मुझे जैसे आपकी बात मैं सुन रही हूँ, सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये विटिलिगो के ही लक्षण हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक लंबी चलने वाली बीमारी होती है, जिसको होती है उसे लंबी चलती है ये बीमारी। दवाइयों से इसका कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि कुछ अच्छे फैक्टर्स होंगे और कुछ बुरे फैक्टर्स होंगे, हमें
2: नहीं मैडम जी, एक मिनट मेरी बात सुनो, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है कोई ना।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना इसमें आपको जलन होगी ना खारिश होगी।
2: आज तक ना ये बड़ी ना ये कम हुई, बस जैसे जितना हमारा अंगूठा है ना इतना ही निशान रहा हो।
1: बहुत अच्छी बात है,
0: अच्छी बात है ये तो कि बढ़ नहीं रही है।
2: वो तो मेरे मतलब टांग के ऊपर जैसे घुटने की होता है ना, घुटने वाला वो सफेद हुआ है बस।
1: जी घुटने के जोड़ पे है,
0: घुटने के जोड़।
2: हाँ जी
0: हाँ, ऐसे कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे कॉमनली होता है। तो मैं तो
2: अंदर ही मतलब चोरी छुपे ही अंदर ही दिखती नहीं किसी को, तो
1: मैं ये भी अच्छी बात है। जी जी, दवाइयों की बात कर रहे हैं कि दवाई खा के थक चुके हैं।
0: मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन इसके लिए दवाई थोड़े लंबे टाइम तक करनी पड़ती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ बाल होगा, जैसे अंगूठे के ऊपर बाल नहीं होते हैं तो वहाँ पे रंग लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन घुटने के ऊपर आराम से रंग आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी इस बीमारी के लिए, जो ऐसी बीमारी होती है जो लंबे टाइम से एक ही जगह होती है, इसे हम स्टेबल बीमारी कहते हैं। तो इसके लिए इवन सर्जरीज तक की जा सकती हैं ताकि रंग वापस आ जाए।
1: जी, लेकिन उससे पहले दवाई अगर सही ढंग से ले ली जाए, वो सर्जरी तो उस कंडीशन में होती है जब कोई इलाज नहीं बचता है,
0: वैसे
1: या फिर कॉस्मेटिक अगर किसी को ठीक करना
0: हो
1: तो।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: लगाने वाली दवाइयों से आपको फर्क पड़ सकता है, आप अपने नजदीकी किसी भी स्किन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए और वो आपको गाइड करेंगे।
2: हाँ जी, हाँ जी
1: जी,
0: और निशानों को धूप भी दिखाइए
1: जी,
0: छुपा के मत रखिए।
2: उसको तो फिर मैंने मतलब जैसे पैंट या पैजामा यूज करता हूँ तो किसी को पता नहीं लगता है।
1: नहीं, पता तो नहीं लगता, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है पाल सिंह जी कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसको धूप दिखानी भी जरूरी है, उससे
2: तो
1: भी
2: मतलब
1: फर्क पड़ेगा।
2: डालनी पड़ेगी बड़े वाले
1: हर समय नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए आप जैसे बाहर बैठते हैं तो थोड़ा सा पजामा या पैंट जो ऊपर थोड़ी सी कर लें ताकि उस चीज को हवा भी लग सके और धूप भी।
0: केवल 10-15 मिनट के लिए ही धूप दिखानी है तो वो तो आप घर पे बैठ के ही कर सकते हैं।
1: जी, और दवाई बहुत जरूरी है। पाल सिंह जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, लेकिन वही स्टिग्मा वाली बात है कि वो उसको ढक कर रखते हैं ताकि किसी को दिखाई ना दे। या फिर एक ये हमारे जो श्रोता थे, इनकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आगे नहीं बढ़ी, उतनी ही रही। तो आपके हिसाब से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है?
0: कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी प्रिवेंशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे जेनेटिक्स में ही होती हैं।
1: जी,
0: इसका पता लगाना कि किसको विटिलिको होगा, ये भी बहुत मुश्किल होता है। जब लक्षण आता है तभी हमें पता चलता है कि इन्हें विटिलिको है। प्रिवेंशन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उनको हम कुछ चीज़ें बताते हैं जिनसे उनके दाग कम फैलें। जैसे कि एक तो चोट लगने से बचें। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ बार बार फ्रिक्शन लगती है, जैसे कि जहाँ हम बेल्ट पहनते हैं, चेन पहनते हैं या फिर वॉच पहनते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो कम फ्रिक्शन होगी, कम चोट लगेगी चमड़ी में और ये निशान कम फैलेंगे।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आजकल गर्मियों के दिन हैं और किसी व्यक्ति को जिसको फुल बहरी है तो उसकी स्किन सेंसिटिव हो जाती होगी इन दिनों, तो किस तरह से देखभाल करनी ज़रूरी रहती है?
0: जो रंग बनाने वाली कोशिका है और जो हमारे शरीर का रंग है वो एक तरह से हमें धूप से बचाव देता है।
1: जी।
0: अब जब वो रंग खत्म हो जाता है तो धूप से बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको फुल बहरी है, उनको स्किन की समस्याएं और धूप से होने वाली जो एलर्जीज़ हैं, लालगी है, खारिश है, वो ज़्यादा होती है।
1: जी।
0: इनको एक तो हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी बाहर जाएं तो पूरे बाजू के कपड़े पहने और जो निशान हैं उनको थोड़ा सा धूप से बचाव रखें, हो सके तो छाता लेकर बाहर जाएं ताकि डायरेक्ट धूप से उनका बचाव रहे। अगर फेस पर निशान है तो हम रिकमेंड करते हैं कि बाहर जा रहे हैं, कड़क धूप में जा रहे हैं, तो या तो मुंह पे कोई कपड़ा बांध लें या फिर सनस्क्रीन पहन लें। ये केवल फुलबहरी के वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत देर धूप में काम करते हैं और जिनकी स्किन सेंसिटिव है।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, अब जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन की तरफ भी रुख कर लेते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
0: तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं विटिलिगो के बारे में और हम चाहते हैं कि हम इसके स्टिग्मा को हटाएं,
1: जी,
0: तो कर हर मैदान फतेह में सॉन्ग प्ले करवाना चाहेंगे।
1: जी।

0: जी, इस मोटिवेशनल सॉन्ग के बाद अब हम अपनी आज की जानकारी पर आते हैं। और आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की जानकारी है विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग फुलबहरी से जुड़ी हुई, और साथ ही त्वचा की कुछ मुख्य समस्याएं जो गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पर देखने में आती हैं इससे संबंधित। तो विटिलिगो के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब बात करते हैं त्वचा की मुख्य समस्याएं जो गर्मियों के दिनों में आती हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हम सबकी त्वचा क्या एक जैसी होती है कि अलग-अलग टाइप्स की होती है?
1: जैसे हम लोग अलग अलग तरह के हैं, वैसे ही हमारी स्किन भी बहुत अलग अलग तरह की होती है।
0: जी
1: हमने ऐसा देखा है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, कुछ आपने टीनेजर्स देखे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी जो स्किन टाइप है उसे हम ऑयली स्किन टाइप बोलते हैं।
0: जी
1: ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली बालों में भी डैंड्रफ रहता है, तो एक तो है ऑयली स्किन टाइप। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी चमड़ी ड्राई है, फटी
0: जी
1: फटी रहती है, मुंह धोते हैं तो खिंचाव पड़ता है, उस स्किन टाइप को हम कहते हैं ड्राई स्किन टाइप।
0: जी
1: फिर एक स्किन टाइप आता है जिसमें कुछ लोगों को लगता है नाक के पास तो बहुत ऑयल बनता है, माथे पे बहुत ऑयल बनता है, लेकिन चीक्स ड्राई रहते हैं,
0: जी
1: इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। और फाइनली आता है सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला है, वो है सेंसिटिव स्किन,
0: जी
1: जिसमें बार बार एलर्जीज हो रही हैं, बार बार धूप से दिक्कत आ रही है, डस्ट से प्रॉब्लम आ रही है,
0: जी
1: तो वो हो गए हमारा एलर्जिक स्किन टाइप या सेंसिटिव स्किन।
0: जी तो क्या ये हमारी जो स्किन है ये हमारी मतलब पेरेंट्स की स्किन के ऊपर डिपेंड करती है या किसी खास इलाके में या कुछ मतलब मेल फीमेल में अलग-अलग तरह की होती है या वैसे ही अलग-अलग टाइप्स हर इंसान के हिसाब से होते हैं?
1: हर इंसान की टाइप अलग अलग होती है, जो मेजरली तो जेनेटिक होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है,
0: जी
1: लेकिन स्किन टाइप इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ रहते हैं,
0: जी
1: किस तरह के एरिया में रहते हैं, ठंडी जगह रहते हैं, गर्म जगह रहते हैं, या फिर आप ग्लोब के किस भाग में रह रहे हैं, है ना,
0: जी
1: क्योंकि जो हमारा रंग बनाने वाली कोशिका है वो उस हिसाब से काम करती है।
0: जी
1: जो
0: हाँ
1: इक्वेटर के पास रहते हैं उनकी स्किन टाइप थोड़ी डार्क होती है, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाते हैं वैसे जैसे स्किन टाइप लाइट होती जाती है। इवन रंग के बेसिस पे स्किन टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 स्किन टाइप्स।
0: जी। और हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि स्किन टाइप्स की हमने बात कर ली, और गर्मियों के दिनों में खासकर जो हैं वो सामने जो त्वचा के ऊपर बीमारियां आती हैं वो कॉमनली कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से हम उनका निदान कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे कि मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं आम जनमानस में देखने में आती हैं त्वचा संबंधी।
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है प्रॉब्लम समर्स में, या फिर जिसे हम कहते हैं मॉनसून और समर का जो मिक्सचर आता है, ये इसमें है फंगल इन्फेक्शंस,
0: जी
1: जो हमारे शरीर के फोल्ड्स हैं, हाथ पैर इवन फेस पे भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जो गोल गोल चकत्ते की तरह आती है और फिर बाहर को फैलना शुरू होती है।
0: जी
1: और कुछ लोग जिनमें डायबिटीज़ होता है उसमें एक अलग तरह की फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। उसके अलावा चेहरे पर छाइयाँ पड़ना, धूप की वजह से छाइयों का बढ़ जाना,
0: जी
1: और धूप की वजह से और जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि सनबर्न होना, टैनिंग होना, या कुछ एलर्जीज जैसे कि PMLE एक तरह की एलर्जी होती है जो केवल धूप से हो रही है। मॉनसून्स में थोड़ा इंसेक्ट बाइट्स भी बढ़ जाती हैं,
0: जी हाँ
1: और कुछ लोग जिन्हें पिंपल्स होते हैं उनके पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं।
0: जी आपने सनबर्न और तेज़ धूप से होने वाली समस्याओं की बात की, तो अक्सर जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि बाहर निकलने से पहले अगर धूप में जाना पड़ रहा है तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ार में हम देखते हैं कि अलग-अलग तरह की होती है, कोई SPF 15 है, कोई 20 है, कोई 50 है, कोई 60 है, तो किस तरह से हम इसको चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइप की स्किन के लिए कौन सा SPF चूज़ करना जो है वो फ़ायदेमंद रहता है?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सनस्क्रीन हमें यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि आप कितनी देर धूप में बाहर रहते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं जो इंडोर जॉब्स होती हैं, उनके लिए हमें बहुत हाई SPF की ज़रूरत नहीं है, इवन SPF 30 भी उसके लिए एडिक्वेट होता है
0: जी। और एज के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा स्किन का बैरियर ख़राब होता जाता है। जैसे बच्चों में हम रूटीनली सनस्क्रीन नहीं रिकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमें लगता है कि और भी स्किन प्रॉब्लम्स, छाइयाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, या सन से डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम हायर SPF बता देते हैं। फिर हर तरह की सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन अलग होती है, कुछ जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड होंगी, कुछ ऑयल बेस्ड होंगी। तो अगर ऑयली स्किन वाले ऑयल बेस्ड लगा लेंगे तो उनके पिंपल्स बढ़ जाएंगे
0: जी।
1: तो उस तरीके से भी हम सनस्क्रीन्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑयली स्किन वालों को यूज़ करनी है जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, और जिनकी ड्राई स्किन टाइप है उन्हें क्रीम या लोशन यूज़ करना है। सेंसिटिव स्किन वाले एक अलग तरह की सनस्क्रीन यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एक सिंपल बात बताई जाए तो मैं ये कहूँगी, अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं SPF 50 लगाइए, धूप में कम जाते हैं 30 लगाइए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज़ लगानी है और अगर हो सके तो 3 या 4 घंटे बाद रिपीट करनी है। बस ये दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, SPF फिर कम इम्पोर्टेंस ले लेगा अगर आप रोज़ लगाएंगे तो।
0: जी, एक और श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
2: मैं मैडम संजय पुरी बोल रहा हूं धर्मशाला से।
0: जी संजय जी, पूछिए आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब, पीछे मेरे को ना जी कोई 10-12 दिन पहले ना जी मेरी स्किन में ना पीठ और पेट में और टांगों में ना ब्रीक ब्रीक फिंसियां जैसी हो गई थी सारे में, तो और लाल भी हो जा रही थी जगह, जैसे दिल कर रहा कि इसको
0: खारिश होती।
2: हाँ खारिश, हल्की हल्की खारिश, जैसे खारिश करने को दिल कर रहा था बड़ा बड़ी। तो पीठ में तो हाथ नहीं पहुंचता, तो किसी चीज से रगड़ के उसकी खारिश करता था। तो मैंने फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने मेरे को ट्यूब दी लगाने के लिए, वो सिट्राजिन थी।
1: हाँ जी।
2: उससे तो काफी मेरे को हर फिंसियां तो खत्म हो गई, पर फिर उसके बाद मेरी जो स्किन है ना जी वो थोड़ी ड्राई सी हो गई है
1: जी। मैं बिल्कुल तो, समझ रही हूँ।
2: हाँ जी,
1: हाँ जी।
2: तो ये पूछना था मैंने कि ये क्या कारण, क्यों हुआ मेरे को, पहली बार हुआ ऐसा जिंदगी में।
1: आपकी बात सुनने से ऐसा लग रहा है कि आपको जिसे हम कहते हैं ना द्रफड़ पड़ना, अर्टिकेरिया जिसे कहते हैं, वो हुआ है। ये इसके ना बहुत सारे कारण होते हैं, दो तरह का होता है, कई बार कम टाइम के लिए रहता है, कई बार ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। कभी कभार खाने की चीज़ों से या बाहर की किसी खाने की चीज़ से, इवन डस्ट से भी एलर्जी की वजह से आपको ये द्रफड़ आ सकते हैं।
2: मेरे को उससे पहले डायरिया हुआ था।
1: बिल्कुल, तो कुछ दवाइयों से भी, इवन कुछ दवाइयों से या फिर इन्फेक्शंस की वजह से भी द्रफड़ आते हैं
2: जी।
1: अब जैसे आपको उन डॉक्टर ने बताया कि सिट्रिजीन खाइए और ट्यूब लगाइए, तो इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपको ड्राई स्किन हो रही है, त्वचा के लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगी। एक तो बहुत गर्म या ठंडे पानी से ना नहाएं, कोसे पानी से नहाएं, और नहाने के बाद पूरे शरीर पे नारियल का तेल लगाएं, तो आपकी वो जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक आना स्टार्ट हो जाएगी।
2: अच्छा, नारियल का ही लगाना कि मैडम सरसों का भी लगा सकते हैं?
1: सरसों का अवॉइड करिए, नारियल का ही लगाइए।
2: अच्छा, नारियल का।
1: हाँ
2: जी। ये चिंता मेरे को हो गई थी वैसे ने
0: जी, और आपकी चिंता का निवारण डॉक्टर साहब ने कर दिया। अब नारियल तेल लगाकर अपनी ड्राई स्किन को ठीक करिए और आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपने अपने प्रश्न का उत्तर हमारे डॉक्टर साहब से पाया, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा प्रश्न का सही जवाब दिया और मेरी तसल्ली होगी
0: जी। ये डॉक्टर साहब धन्यवाद के पात्र हैं जी। धन्यवाद आपका।
2: साहब जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्हें कहिए
0: जी
2: कि उन्होंने मेरे को काफी चिंतित, मैं चिंतित था किस कारण मेरे को।
1: बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस नारियल का तेल लगाइए।
2: ठीक है मैम,
0: धन्यवाद जी। जी जब मरीज हंस के बात करते हैं ना तो समझ आ जाता है कि उनकी समस्या का जो निवारण है वो हो चुका है। एक और श्रोता फोन लाइन पर है। जी स्वागत है आपका आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं।
3: मैं पालमपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शांति स्वरूप है।
0: जी शांति स्वरूप जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप।
3: हेलो
4: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए।
4: जी मेरा नाम सुदेश कुमारी है। वो मेरे
0: जी
4: छाइयां आ गई, जैसे धूप में जाती ना तो बहुत ज्यादा
0: छाइयां। बिल्कुल जी जी डॉक्टर साहब।
4: और डॉक्टर से ली थी हमने तो उन्होंने SPF 30 बताई ना मेरे को।
1: बिल्कुल।
4: और एक ट्यूब बताई थी और खाने को दी थी, वो तो खाई, पर जैसे मैं धूप में जाती हूँ और वो सनस्क्रीन लगा कर जाती हूँ बहुत पसीना आता है उससे।
1: समझ रही
4: हूँ। और मुंह में तो सारे ना जैसे अलग अलग हो गए, जैसे छाइयों का अलग कलर और जो स्किन बीच बीच में अलग अलग हो गए।
1: समझ रहे हैं हम। देखिए छाइयों के बारे में ना मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहती हूँ। ये ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो ना केवल धूप की वजह से होती है, लेकिन इवन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना, खाना पीना ठीक नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब की वजह से भी छाइयाँ होती हैं। और छाइयाँ एक लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है, बीच में आएगी फिर चली जाएगी फिर वापस आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सनस्क्रीन से आपको बहुत पसीना आ रहा है तो आप ऐसी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जिसका मैट फिनिश हो। जब भी आप सनस्क्रीन पढ़ें तो कोशिश करें कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन विद मैट फिनिश लें, उससे आपको कम पसीना पड़ेगा। धूप में जाते हैं तो छाता लेकर जाइए। और मैं आपको यही बोलूंगी कि एक बार फिर से अपने स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे क्योंकि वो आपको वहीं पे देख रहे होंगे।
0: जी हाँ, क्योंकि सामने देखकर ज्यादा अच्छे से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। जी
1: और अपने आयरन लेवल्स चेक करवा लीजिए मैम एक बार, कई बार उसकी भी कमी होती है। बिल्कुल
0: जी। सुदेश जी और कुछ पूछना चाहेंगे। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में समय जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और थोड़ा सा समय बचा है। एक और श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रोता जब आते हैं तो वो अपनी किसी समस्या के साथ आते हैं। जी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: जी
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए।
5: मैं सुरजीत सिंह बोल रहा था जी,
0: जी सुरजीत सिंह जी, पूछिए जल्दी से क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से।
5: डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी।
5: मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो बुजुर्ग आदमी है, छतरुआ साहब ज्यादा है, जैसे हमारी टांगों टूंगों में दर्द हो जाती है और फिर इसमें प्यूबर्टी आप लगाते हैं जैसे के नाम ओमी जल वगैरह जो ऐसी ऐसी लगती है जैसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
5: हाँ तो उसमें लगाने के बाद खुजली हो जाती है ज्यादा, तो खुजली होने के बाद भी क्या भी उसमें स्पेस में से दरफड़ आ जाता है गांव में जूंगा घुटनों का, तो उसका क्या कारण है। फिर एक बार मैं फोर्थ ड्रम लगाता हूँ तो खुजली आ जाती है।
1: यहाँ पे मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी, ये जो आप फोर डर्म लगा रहे हैं ना ये बहुत हानिकारक हो सकती है आपके लिए। फोर डर्म एक ऐसी क्रीम है जिसमें चार चीजें हैं और उसमें से एक स्टेरॉइड है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि फोर डर्म आप बंद कर दीजिए। कुछ ऐसे जेल्स होते हैं जैसे आप कह रहे हैं ओमनी जेल, डिक्लो जेल, उनसे आपको खारिश होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी जब भी वो जेल लगाने हैं उससे पहले आपने नारियल का तेल लगा लेना है ताकि आपका जो चमड़ी का बैरियर है, मतलब एक तरह से आपकी चमड़ी मॉइस्चराइज हो जाए, उसमें नमी आ जाए। नमी वाली चमड़ी पर जब आप लगाएंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी
5: एक बात हो रहा है सर, जैसे ददरी टाइप हो जाती है ना, जैसे मेरी उंगली में एक स्पेस द्रफड़ से रहते हैं उसमें भी कभी कभी खुजली ज्यादा हो जाती है, खुजली करते हैं तो उसमें पड़ जाता है, तो उसमें क्या इलाज करना चाहिए।
1: सुनने में ये फंगल इन्फेक्शन लग रही है, इस पे फोर डर्म बिल्कुल ना लगाए।
5: अच्छा
1: है ना, और साथ में फोर डर्म ना लगाए और डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है और इसका प्रॉपर इलाज जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब बहुत कम समय बचा है, त्वचा से जुड़ी बीमारियों के बारे में हमने जितनी बात की है या जो समस्याएं आजकल आती हैं उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं, आप हमारे श्रोताओं को जल्दी से बताइए।
1: सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फंगल इन्फेक्शन्स के बारे में. फंगल इन्फेक्शन्स समर्स में ज़्यादा होती हैं, मानसून में ज़्यादा होती हैं. सबसे पहले टिप, अपने कपड़े अच्छे से धो के सुखा के प्रेस करके पहने, क्योंकि बरसातों में कई बार हमारे कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं. बिल्कुल, जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं हमेशा कॉटन के हवादार अंडरगारमेंट्स पहने. जब भी आपको ऐसा लगता है कि लाल निशान आ रहा है तो उसे सेल्फ ट्रीट ना करें उस पे. जैसे ये हमारे पहले श्रोतागण थे, ये फोरडर्म लगा रहे थे, ऐसी क्रीम ना लगाएं. और जितना ज़्यादा आप अपना स्वेट से पसीने से बचाव रख सकते हैं उतना बचाव रखें.
0: जी, और खाने पीने में किस तरह का एडिशन होना चाहिए?
1: जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें खाएं, क्योंकि समर्स आ रही हैं, डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं. तो खूब पानी पीजिए और एक बैलेंस्ड प्रोटीन रिच डाइट लीजिए.
0: जी जी डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में और समय नहीं बचता कि हम आपसे आज और जानकारियां ले पाएं, लेकिन फिर किसी दिन हम मिलेंगे इसी मंच पे त्वचा संबंधी और जानकारी लेकर. फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इतना कीमती समय दिया हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू, आपने मुझे बुलाया.

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा भंगाल के दौरे पर। 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर। केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र में विकास के अलावा आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा भंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइडल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा भंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है, वे कल बड़ा भंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को करीब से समझना और सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके, इसलिए ये यात्रा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल की कठिन परिस्थितियों को मौके पर जाकर ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान में उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टा टेस्ट के आधार पर आकलन करने का निर्णय लिया गया है।
1: दो चीजें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा यह भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
0: आम लोगों तक सरल और सुलभ न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है। 21 अप्रैल से जारी इस महाअभियान के तहत वर्तमान में राज्य, जिला व उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरणों और मध्यस्थता केंद्रों में बेसुलह बैठकें आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का सुलह व समझौते के जरिए त्वरित समाधान करना है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इस महाअभियान का समापन 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत के साथ होगा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नव निर्वाचित 3,758 पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रधान और उपप्रधान सभी वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एजेंडों के अनुसार आज पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में सड़क संपर्क, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल व सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। मॉनसून को देखते हुए भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि जिला परिषद, बीडीसी तथा नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले सम्पन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग हॉर्स ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में कल रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन दिनों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कल 28 जून को इस प्रतियोगिता में सीमा 10000 मीटर की दौड़ में भी भाग लेगी। सीमा के बेहतर प्रदर्शन से उनका जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए चयन हो गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद प्री मॉनसून का असर देखने को मिला। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मॉनसून 5 दिनों की देरी से चल रहा है और जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, रामपुर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, मां बेटे समेत 6 की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, फेसबुक पर लाइव थी महिला, चालक ने नियंत्रण खोया और पिकअप खाई में गिरी, 6 की मौत। शिक्षकों को 2028 तक पास करना होगा टेट, नहीं तो जाएगी नौकरी, शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सख्त, दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भी 2028 से पहले पास करना होगा टेट। हिमाचल दस्तक के अनुसार सीएम ने चंडीगढ़ में मांगी हिमाचल के हक की 7.19% हिस्सेदारी। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 4 जिलों में प्री मॉनसून की झमाझम बारिश, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बरकरार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा बंगाल के दौरे पर, 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र के दौरे पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में

0: हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर। केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र के विकास के आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

यासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
3: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबो वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय है प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों का पुनर्वास।

जी श्रोताओं, सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों के पुनर्वास जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते क्या हैं। जी हाँ, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक गहरा घाव होते हैं सांप्रदायिक दंगे। ये एक ऐसी दुखद स्थिति होती है जहाँ दो या दो से अधिक धार्मिक, जातीय या भाषाई समुदायों के बीच नफरत, गलतफहमी या किसी तात्कालिक विवाद के कारण हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। अक्सर इन दंगों के पीछे कुछ स्वार्थी तत्वों का हाथ होता है।

जी हाँ, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे कभी भी अचानक या अपने आप नहीं होते। इसके पीछे समाज के कुछ खास तत्वों की सोची समझी साजिश और स्वार्थ होता है। समाज शास्त्रियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार दंगे फैलाने वाले लोगों को मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है और उनका लक्ष्य समाज का भला करना नहीं बल्कि अपने निजी और अपने कुछ खास हितों को साधना होता है। आइए समझते हैं कि ये लोग कौन होते हैं जो सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं और इनके पीछे इनका एजेंडा यानी लक्ष्य क्या रहता है। दंगे भड़काने और उन्हें जमीन पर अंजाम देने के अलग अलग स्तर के लोग शामिल होते हैं जिनमें कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं। ये वे लोग या संगठन होते हैं जो समाज में लगातार दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इनका काम 24 घंटे लोगों के मन में ये डर बैठाना होता है कि आपका धर्म खतरे में है। और कुछ अवसरवादी राजनीतिज्ञों की अगर हम बात करें तो सभी नहीं, कुछ ऐसे नेता या राजनीतिक दल जो विकास, शिक्षा या रोजगार के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते, वे समाज को बांटकर वोटों की फसल काटने का काम करते हैं। ये सीधे तौर पर दंगे में शामिल नहीं होते बल्कि पर्दे के पीछे से नफरत को हवा देते हैं। सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ मेकर्स भी इस तरह के काम करते हैं। जी हाँ, डिजिटल युग में ये एक नया और ख़तरनाक वर्ग है। ये लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर बैठकर झूठे वीडियो, पुरानी तस्वीरें और भड़काऊ मैसेज बनाकर शेयर करते हैं ताकि समुदायों में गुस्सा भड़क उठे। इसके साथ साथ असामाजिक तत्व और अपराधी, हर शहर या इलाके में कुछ ऐसे अपराधी, चोर, उचक्के या बेरोजगार युवक होते हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं होता। जब माहौल गर्म होता है तो ये भीड़ का हिस्सा बनकर लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। श्रोताओं, दंगा फैलाने वालों का कोई एक लक्ष्य नहीं होता बल्कि वे एक साथ कई मोर्चों पर अपना फायदा देख रहे होते हैं। जैसे कई बार दंगों के पीछे ज़मीनी और व्यापारिक रंजिशें होती हैं और साथ में समाज में डर और वर्चस्व कायम करना

कट्टरपंथी ताकतें दंगों के जरिए समाज में अपना खौफ पैदा करना चाहती हैं या फिर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना भी इनका एक लक्ष्य रहता है। दंगा भड़काने वालों का हथियार जो होता है वो होता है आम आदमी की धार्मिक भावनाएं और उनकी अज्ञानता। ये आम लोगों खासकर युवाओं के गुस्से का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। दंगे में मरने वाला या जेल जाने वाला हमेशा किसी गरीब का ही बच्चा होता है, जबकि दंगे की योजना बनाने वाले सुरक्षित कमरों में बैठे रहते हैं।

और प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का ये एक शीर्षक है। जी हाँ, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और दंगा पीड़ितों की मदद करना। दंगा पीड़ितों का पुनर्वास की जब हम बात करते हैं तो ये सूत्र पूरी तरह से उन लोगों को समर्पित है जो किसी भी दुखद सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं। इनके लिए सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, दंगे में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को और गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से तुरंत वित्तीय मुआवजा दिया जाता है। इसके साथ साथ आशियाने और संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी की जाती है। जी हाँ, जिन लोगों के घर या दुकानें दंगों में जला दी जाती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं, उन्हें दोबारा मकान बनाने या मरम्मत के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवास योजनाओं में भी पीड़ितों को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही आजीविका और रोजगार सहायता भी दी जाती है, जैसे पीड़ितों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण यानी लोन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय या दुकान दोबारा शुरू कर सकें। जी हाँ, पुनर्वास केवल पैसे देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना भी इसका हिस्सा है। इसके लिए कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जैसे बिंदु संख्या 13 में सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम की बात की जाती है। सबसे पहले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान होती है। जी हाँ, देश के जिन जिलों या क्षेत्रों में दंगे होने की आशंका अधिक होती है वहाँ कानून व्यवस्था को पहले से मजबूत किया जाता है। इसके साथ साथ निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति भी इसके अंतर्गत आती है। जी हाँ, दंगा प्रभावित या संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता है जो पूरी तरह से निष्पक्ष और कुशल हों ताकि वह हिंसा को भड़कने से रोक सकें और पीड़ितों की बिना किसी भेदभाव के मदद कर सकें। इसके साथ साथ बिंदु संख्या 14 में सांप्रदायिक अपराधों के लिए मुकदमे का भी प्रावधान है। जी हाँ, इसके अंतर्गत त्वरित न्याय यानी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन भी होती है। जी हाँ, पुनर्वास का एक बड़ा हिस्सा न्याय है। इसके तहत दंगों के मामलों में जो इसकी जांच है तेजी से करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है। इससे पीड़ितों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल होता है। और पुनर्वास प्रक्रिया की कुछ मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो तत्कालिक राहत, जिसके अंतर्गत पीड़ितों के लिए सुरक्षित राहत शिविरों, भोजन और मुख्य जो मुफ्त चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की जाती है, समान अवसर जिनमें पुनर्वास योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबके तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है, और निगरानी में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस बात की निगरानी करते हैं कि ज़िला स्तर पर पीड़ितों को समय पर मुआवजा और सहायता मिल रही है या नहीं। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम केवल एक आर्थिक सहायता पैकेज नहीं है, बल्कि ये दंगा पीड़ितों को मानसिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रूप से दोबारा मुख्यधारा में वापस लाने का एक सरकारी सुरक्षा कवच है। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंसा से प्रभावित हुआ कोई भी बेकसूर नागरिक खुद को लाचार

ना समझे। जी श्रोताओं, तो ये तो थी हमारी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय था प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों का पुनर्वास। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारी आज की लघु वार्ता। क्षमा कीजिए, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सितारा कार्यक्रम, और आज जिस सितारे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं प्योली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से प्रचलित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दौड़ने की कला को नया मुकाम देने वाली महान एथलीट पीटी उषा की। तो उठाइए अपनी यादों का पर्दा और चलिए हमारे साथ इस सुहाने सफर पर, इस जानकारी के साथ जो पीटी उषा के जीवन से जुड़ी हुई है। जी दोस्तों, 27 जून सन 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के एक छोटे से गांव प्योली में एक बच्ची ने जन्म लिया। पूरा नाम रखा गया पिलावुला कांडी थेके पर बिलम उषा। नाम जितना लंबा था उनके हौसले भी उतने ही ऊंचे होने वाले थे। उषा के बचपन की अगर हम बात करें तो उषा बचपन में बहुत बीमार रहती थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। प्योली के समंदर के किनारे रेत पर दौड़ते हुए इस बच्ची ने लहरों की रफ्तार को ही अपना हम सफर बना लिया था। जी हाँ, और इस तरह से उनके किरदार की एक झलक सबकी आंखों के सामने आने लगी थी, क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ती थी।

और कहते हैं कि अगर बचपन में ही किसी बच्चे के हुनर को पहचान कर उसको उड़ान दी जाए ना, तो एक दिन वो सफलता के शिखर पर ज़रूर चमकता है।

जी हाँ दोस्तों, आज के एक सितारा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पीटी उषा की। तो दोस्तों, उनके बचपन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खिलाड़ी पढ़ाई में कैसी थी। तो भाई, उषा जी पढ़ाई में भी अव्वल थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पयोली के ही एक स्थानीय स्कूल से पूरी की, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1976 में, जब केरल सरकार ने महिलाओं के लिए एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला। उषा जी को वहां चुना गया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु, उनके मेंटर ओ.एम. नाम्बियार जी से। नाम्बियार जी ने इस हीरे को तराशा और फिर जो हुआ वो इतिहास है। बाद में खेल के साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। और दोस्तों, हम ये बात भी आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी सितारे को चमकाने में उसके

परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पीटी उषा के पिता ईपीएम पायथल एक कपड़ा व्यापारी थे और माँ टीवी लक्ष्मी एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा 100% रहा। तो तभी तो कहते हैं ना कि अगर परिवार का सपोर्ट हो तो सब अच्छा ही होता है, और हीरे को तराशने के लिए जौहरी की नज़र होना बहुत ज़रूरी है, और जब इस तरह से हो जाता है ना तो फिर चमत्कार सारी दुनिया के सामने होता है।

जी हाँ, पीटी उषा के बारे में हम बात कर रही हैं तो उनके वैवाहिक जीवन के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि साल 1991 में पीटी उषा ने वी श्रीनिवासन, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी थे, से शादी की। उनका एक बेटा है डॉक्टर विग्नेश। शादी और माँ बनने के बाद भी उषा ट्रैक पर लौटी और पदक जीते, जो ये दिखाता है कि उनके परिवार ने उनका कितना साथ दिया। अब उनके खेल के सफर की बात करते हैं और चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं उस एथलेटिक्स ट्रैक पर जहां उषा जी की हवा से बातें करती हुई रफ्तार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था।

जी दोस्तों, अब बात करते हैं उनके खेल के करियर की। तो सन 1980, जिसमें मॉस्को ओलंपिक की बात हम ज़रूर आपसे करना चाहेंगे, छोटी सी उम्र में सबसे युवा भारतीय एथलीट बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। और बात करें सन 1983 की, तो 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई एथलेटिक्स के अंतर्गत कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने अपनी धमक दिखाई थी। और बात करें सन 1985 की, तो सियोल एशियाई खेल में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर पूरे एशिया में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराने वाली थी पीटी उषा। और बात करें सन 1984 की, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। एक ही प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इन्होंने आज भी ये रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड कायम रखा है। जी हाँ, और इनके जीवन के कुछ बेहद रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात भी आपके साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

no shot, that's the Bolo Chan art.

जी दोस्तों, पीटी उषा के जीवन से जुड़े बेहद रोचक और अनसुने तथ्यों की अगर हम बात करें तो सेकंड के 100वें हिस्से का वो दर्द। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंजलिस ओलंपिक का खेल प्रेमियों को वो मैदान याद रहेगा हमेशा के लिए, जिसमें 400 मीटर हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में पीटी उषा जी सेकंड के 100वें हिस्से 0.01 सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल चूक गई थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे मिल्खा सिंह जी रोम ओलंपिक में चूके थे। पूरा देश रोया था लेकिन उषा जी ने हार नहीं मानी थी। इसके साथ साथ जब सियोल में लोगों ने पूछा उषा कौन है, जी हाँ, सन 1985 के सियोल एशियन गेम्स में पीटी उषा जी का ऐसा जलवा था कि वहाँ के अखबारों और लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। लोग भारत को पीटी उषा का देश कहने लगे थे। उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो संन्यास लेने के बाद उषा जी शांत बिल्कुल नहीं बैठी। उन्होंने केरल में अपनी खुद की एकेडमी खोली जहां वे मुफ्त में देश की बेटियों को एथलीट बनाती हैं। उनकी शिष्या टिंटू लुका ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ संसद से आईओए के शिखर तक। और दोस्तों, आज का सबसे ताज़ा और गर्व करने वाला तथ्य ये है कि साल 2022 में पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया और वह राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो ये है उनके सक्सेस स्टोरीज के कुछ फैक्ट्स।

तो दोस्तों, पयोली की रेत से लेकर देश की संसद तक का ये सफ़र हमें सिखाता है कि अगर आपके पैरों में लगन की गति हो तो दुनिया का कोई भी रोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। सलाम है उड़न परी पीटी उषा जी को। तो दोस्तों, आज के एक सितारा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर किसी दिन मिलेंगे एक और चमकते सितारे की कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन। जी हाँ, आकाशवाणी हमीरपुर।

जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक सितारा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमने आपको आज जानकारी दी पीटी उषा जी के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने आले अहां दे सारे स्रोतियां दा बड़ा बड़ा स्वागत कने सभी जो अंजू शर्मा दी तरफा ते राम राम जी श्रोतियो। अज भी अहां बड़े सारे पहाड़ी लोक गीत लई कने तुहां दी खातिर हाजिर होए हो इस कार्यक्रम च। तां चला फिरी कार्यक्रम दी शुरुआत च सुनी लैंदे ममता जसवाल होरां दा गाया ए लोक गीत।

0: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी श्रोताओ, लोक रंग कार्यक्रम तुहां सुना दे तुहां दी अपनी फ्रीकुएंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कने पहाड़ी लोक गीतां दी जे गल करिए तां इन्हां च हिमाचल दी खूबसूरतियां दा वर्णन बड़े अच्छे तरीके नाल कीता हुंदा। बई हिमाचल दे उच्चे उच्चे पहाड़, कल कल करदे पहाड़ां च ते निकलदे झरने, कने इत्थी दी आबो हवा, इत्थे आई के तां हर किसी दा मन इयां हो जांदा भई बस हिमाचल च ही अपना निवास स्थान बनाई लिया जाए। कने इत्थी रही करी इत्थी दी संस्कृति दे बारे च जे अहां गल करिए तां इत्थी दे लोक गीत जे हन सै भी अपने आप ही सुनने आलियां दा मन मोही लैंदे। हर अवसर पर हर तरीके दे लोक गीत गाए जांदे, तां इन्हां लोक गीतां दीआं धुनां कने प्यारे प्यारे जिहड़े बो गाने आलियां दे अंदाज हुंदे, कने इन्हां दे शब्द अपने एक अलग पहचान बनांदे हन।

0: कश्मीरी संत ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी संत ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी संत ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418003636।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी श्रोताओ, मीना ललहाल होरां दे गायो इस लोकगीत सौगी हुण अजकल लोकरंग कार्यक्रम इत्थे खत्म करने दी अंजू शर्मा जो दिया इजाजत। राम राम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा बंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइड्रल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा बंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है। वे कल बड़ा बंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को करीब से समझना है, जिससे सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए हैं, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टर टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि अभियान के तहत उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टर टेस्ट के आधार पर आंकलन करने का निर्णय लिया गया है।
1: दो चीजें की जा रही हैं। एक, जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा, ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा, और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
0: प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जिला परिषद, बीडीसी और नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले संपन्न हो जाने थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा है और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। इन कर्मियों ने कहा है कि इन्हें मात्र करीब 6000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है, जिससे इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में करीब 5000 मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी के अनुरूप अलग नीति बनाने, वेतन भुगतान की निश्चित तिथि तय करने जैसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
2: भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: दुखी बेदुखी हो।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ Any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। तो जै जै कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथे की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के

मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था ये।

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दिग दिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।
2: जाने कैसे

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दे क्यों तड़पाए जी राम रब जाए के, ओ निर्दर्दे मैं पछताई तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ

0: दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहाँ आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रहीं, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देवधरा के गीत।

देवधरा के गीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ लोकगीत लेकर हाजिर हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला पहाड़ी लोकगीत। जी, इस लोकगीत को गाया है रीना कुमारी ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं एक और पहाड़ी लोकगीत जो हिमाचल की लोक संस्कृति को दर्शाता है। इस लोकगीत को गाया है पिंकी और सुनीता ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जी श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब आज का पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम देवधरा के गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। जी सैनिक भाइयों, हम उपस्थित हुए हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं देशभक्ति के इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म चाइना गेट से। गायक कलाकार हैं हरिहरन, विनोद कुमार राठौर और सोनू निगम।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कोयला से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टशन से।

जी सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना सोनू निगम और तुलसी कुमार का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म हमको दीवाना कर गए से। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से।

जी सैनिक भाइयों, सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, सैनिक भाइयों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजा है अब से लेकर 2 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोज़ाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता, पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते, कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया, कभी धूप तो कभी हो छैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है वाकई जो चीज़ें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है, ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताज़ा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे, और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती ज़रूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारवां छूटता है, साथ ही संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवर चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियाँ, क्योंकि आमतौर पर सखियाँ तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा वो, किस्सा क्या है, हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तेज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की ये यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज़, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते ज़माने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफ़र गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसीलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो, संगीत हो, राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में, एक एक पंक्ति में, एक एक गीत में। आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है। जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र, यार, दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि आज जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजिए, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आपसे जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कहीं कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है, लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मज़ा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त ज़रूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के ज़माने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफ़र। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहते हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है, और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में। इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का कह रहे हैं कि सर्व कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है, और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सब के सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है, लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं, समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते हैं कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज़ में है।

जान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।

0: धूप तो कभी छाओ।
1: कभी धूप कभी छाओ, कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त का संगीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीत किसकी आवाज में गीत है हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहाँ उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा है, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फ़ोन आना। वही हमारे एक साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहाँ मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफ़र की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं हमारे एक साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियाँ आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने ज़माने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फ़ोन उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफ़र में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहाँ पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला। स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला। एक अलग ही तरह का माहौल था उस दिन, सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाया जाता है, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहाँ मौका मिलता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज़ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में, और वहाँ उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहाँ पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ, फिर हम वहाँ से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए, और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे। अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहाँ पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त किसे 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई और हमने पुरानी बातें की। तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40 45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज़ में गाइड फिल्म से एक गीत आपने सुना, यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें, और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
6: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
6: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग

0: 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उड़ चले।
1: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: प्यार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में उन्होंने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित व किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में इस मौके पर एक कार्यक्रम में बताया कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है और देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने उद्यमियों से आधुनिक तकनीक अपनाने और गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत कम करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
2: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मॉनसून पूर्व की भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से कल सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोले जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम शिमला जिले के रामपुर इलाके में तकलेच काशापाट सड़क पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में उरेई समरा सड़क पर आज एक कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सामयिक चर्चा। विषय है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार। वाचक स्वर पूनम शर्मा का है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल रविवार 28 जून से देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को पोलियो मुक्त बनाए रखना और बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। बूथ दिवस के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। ये खुराक पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और निशुल्क है। जिन बच्चों को पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी है उन्हें भी इस अभियान के दौरान दोबारा पोलियो की दवा पिलाना पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के दौरान प्रदेश के 5,94,000 से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4,753 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। पोलियो वैक्सीन सहित सभी आवश्यक सामग्री समय रहते सभी जिलों एवं बूथों तक पहुंचा दी गई है और प्रशिक्षित टीकाकरण दलों और पर्यवेक्षकों की तैनाती भी कर दी गई है। अभियान की तैयारियों की समीक्षा 23 जून 2026 को स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश एम सुधा देवी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य टीकाकरण कार्यबल की बैठक में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया और अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे 28 जून को अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसे पहले पोलियो की खुराक मिल चुकी हो, अपने निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं और पोलियो की 2 बूंद पिलवाएं। उन्होंने कहा कि बार बार पोलियो की दवा पिलाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होती है तथा पोलियो वायरस के संक्रमण का खतरा समाप्त करने में सहायता मिलती है। बूथ दिवस के बाद 29

और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मिशन निदेशक ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो बूथ तक लाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहले ही सभी पात्र बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर ली गई है जिससे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2011 से पोलियो वायरस से मुक्त है जो देश की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी बच्चे तक ये दवा नहीं पहुँचती है तो संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को जीवन भर के लिए विकलांग बना सकती है, लेकिन समय पर दी गई पोलियो की दो बूंद इस बीमारी से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि अब वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को 28 जून को निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं। यदि किसी कारण से बच्चा बूथ तक नहीं पहुंच पाता है तो 29 व 30 जून को घर घर आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम से उसे पोलियो की दवा अवश्य दिलाएं।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से, एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शे के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दुराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो ये है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो, गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ आप

0: डॉक्टर साहब, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए, बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है, आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है।
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ़ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी?
4: सीनो,
1: मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
4: पानी,
5: थोड़ा पानी
4: पानी। ओह पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए ये लीजिए पानी। भगवान दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है।
4: अम्मा, अम्मा।
1: मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा, तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो,
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो?
0: अरे भाई, पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो? ये लो, उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा, भैया अट्टहास कैसा? अरे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह, ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी,
1: ऐसा करो, तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है, और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा,
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे

0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं। अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
0: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो।
0: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना।
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सुमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बक्स ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठाकर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे?

0: आप?
1: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
0: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
1: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
0: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान। और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
1: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
0: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
1: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
0: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
1: रात के 10 बज चुके हैं।
2: अरे
0: नागमणी, तुम क्या बात है? इतने बेचैन क्यों हो?
2: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
0: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
2: आपके पैर पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
0: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
1: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
2: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
0: जल्दी चलो। नागमणी, आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए, डॉक्टरनी, धमकाती है? जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सामी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही, और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात
2: हुई,
3: ओपनिंग हुई दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो।
2: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
2: कोई पैसा नहीं देते
3: नहीं
2: थे।
3: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
2: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
3: यही
2: रहे,
3: काम
2: ये
3: करता रहा।
2: संघर्ष जो
3: अब इसको
2: था।
3: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था। अब
2: हाँ
3: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
2: अच्छा,
3: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
2: इतना
3: नहीं था,
2: पैसा मिल जाता था
3: इतना
2: आपको।
3: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूज़िक रूम में लेके गए।
2: अच्छा।
3: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
2: जी, सपने देखने जैसा।
3: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
2: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
3: जी
2: गीत सुन लेते हैं पहले।
3: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
2: जी
3: हूँ,
2: बताइए।
3: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
2: मेरा
3: महबूब
2: महबूब
3: आए।
2: आए।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहाँ से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत नहीं
1: परेशानी
0: थी।
1: नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफ़ी समय हो गया है। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश हो
0: भी
1: जाता।
0: ऊर्जा आ जाती थी, एक
1: हाँ, लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता
0: प्रति
1: है,
0: ना, इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज़्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी।
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
0: जी खैर, ये तो
1: कहीं ना
0: आप
1: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा।
1: उनके जैसा, हो सकता है,
0: जी
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
1: जी
0: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना,
1: जी
0: हजरत
1: जी
0: साहब
1: जी
0: को।
1: जी बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
1: जी
0: है ना
1: जी
0: सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
0: जी
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना, आप ही का लिखा वही गीत था।
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी,
0: फिर तो
1: जी, जी,
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
1: जी, जी,
0: तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा।
1: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की। और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला। और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
0: अरे वाह।
1: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
0: अच्छा।
1: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
0: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
1: वो तो
0: शानदार और लेजेंड से थे
1: उनका
0: वो
1: तो
0: तो।
1: क्या कहना।
0: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा। बहुत बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी।
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफ़ी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पर रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी हैं, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है।
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था?
1: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
0: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
1: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
0: अच्छा।
1: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
0: हाँ।
1: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, ओके। लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया, हमारा उम्र में बहुत फ़र्क था।
0: जी
1: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है, मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
0: डरना
1: का
0: क्या।
1: टाइटल सॉन्ग था,
0: जी,
1: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
0: आपको
1: दिया।
0: दिया। हाँ
1: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
0: तो
1: पहली
0: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
1: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
0: ठीक है।
1: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
0: हाँ
1: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
0: अच्छा
1: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
0: हाँ
1: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
0: तेरे
1: की,
0: नाम की।
1: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
0: क्योंकि तुम वो
1: हटके। तो
0: हटके।
1: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मज़ा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
0: हाँ
1: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
0: अच्छा
1: अपने गाने पे,
0: क्या बात है।
1: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई, और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बना दी।
0: बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला है
1: सुंदर है
0: और
1: इसमें,
0: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
1: सबसे
0: का।
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही
0: जी
1: दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात,
1: दिमाग
0: बहुत
1: में डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये, बारीक
1: बारीक
0: काम
1: काम
0: था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: धैर्य। मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये पैंतरा क्या था और किस
1: देखिए
0: तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत
1: ओढ़ली पैंतरा
0: खूब
1: था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी
0: से
1: जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
0: कुमार
1: वो,
0: सानू के
1: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
0: जी।
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी हैं। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की, उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
0: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
1: पैंतरा हो
0: खेला।
1: गया।
0: जी
1: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से हम मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहाँ से निकला और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको
0: हम्म,
1: सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
0: उनकी
1: उनका गाना
0: रिकॉर्डिंग
1: है।
0: है।
1: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
0: अरे
1: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
0: अच्छा
1: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
0: नहीं
1: सकते।
0: गा पाएंगी।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फ़ोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा ख़ास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
0: क्या बात है।
1: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
0: आंखें
1: बातें
0: बोलती
1: करती
0: हैं।
1: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फ़ोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला, मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज़ आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
0: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
1: एक ही लाइन थी,
0: अच्छा
1: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
0: जी।
1: और वो आए और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है क्या है ये। हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
0: अच्छा जी।
1: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
0: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम
1: जी
0: हाईलाइट होती हैं उस
1: जी
0: गाने में, और सलमान गाते हैं तो
1: गाते
0: ये
1: हैं
0: बहुत
1: बहुत
0: प्यारा
1: अच्छा
0: लगता है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी। मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें

0: कविता के शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता। और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी।
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ।
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ,
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा। तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
0: हाँ, अच्छा।
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: लिखता हुआ है,
1: हाँ,
0: वो
1: वो
0: क्यों आए
1: क्यों आए
0: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
1: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साडे नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
0: अच्छा
1: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था। उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ,
0: जी, ये सबसे बड़ी
1: अपनी
0: बात
1: बात
0: है।
1: को रखते हुए।
0: जी
1: मैं ऐसा
0: जी
1: नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मज़ा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूँ। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
0: अच्छा
1: दादी गाएगी भी।
0: अच्छा
1: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
0: हाँ
1: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात, अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
0: सही बात
1: मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि मुझे
0: बिल्कुल
1: भी लगे और दुनिया को भी लगे।
0: जी।
1: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फ़ोन किया
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
0: अच्छा
1: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा। उसमें अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुढ़ी बुढ़ी भी नाचना शुरू कर देती
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
0: जी
1: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा। बोले नहीं दादा नहीं, दादी।
0: जी
1: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
0: जी
1: यहां तक तो दादी गाती है, अब
0: हाँ
1: लड़का क्या जवाब दे,
0: हाँ
1: दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
0: क्या बात है
1: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
0: जी।
1: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
0: जी,
1: गीत सुनाइए।
0: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
1: हमराज।

0: झटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा की।

कार्यक्रम रूपरेखा के बाद आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ एपिसोड 7। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युव मंच। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नए पुराने फिल्मी गीतों के संगम पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई स्थानीय बोली में सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हिंदी समाचारों का समय रहेगा शाम 7:00, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर हिंदी समाचारों के बाद। शाम 7:25 पर सुनेंगे स्थानीय बोली में कार्यक्रम रौनक ग्राइंदियां। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 7:45, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं रात्रि 8:00 से लेकर रात्रि 8:44 तक और फिर रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 10:00 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: समाचार संध्या का आज का अंक सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे सुनेगा न्यूज़ एट 9, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रंगी गजल कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा रात्रि ठीक 10 बजे। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित नियमित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर रात्रि ठीक 10:30 पर। सभा के अंत में देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, शाम के 5:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
2: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में। उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
3: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए एक किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर एक किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
2: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
3: जी बिल्कुल,
2: तो उसके लिए भी एक रेट है,
3: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें। तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भी भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
2: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
3: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
2: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
3: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
2: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
3: जी
2: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
3: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
2: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
3: बिल्कुल,
2: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
3: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
2: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला? समाज के किस तबके को मिला?
3: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया। और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है, इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
2: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
3: नहीं,
2: क्या है,
3: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
2: जैविक है,
3: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
2: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
3: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
3: जी,
2: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
2: पड़ा,
3: बिल्कुल असर
2: वृद्धि हुई है,
3: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चलकर।
2: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
3: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
2: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
3: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते टेंडर करते कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज्ड रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गए, किया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
2: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है।
3: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
2: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
3: बिल्कुल चल रहा है,
2: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
3: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
2: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
3: बिल्कुल जानकारी।
2: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
3: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में ही
2: है। अंबिकापुर में। तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
3: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
2: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
3: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं वो एक भर कितना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
2: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
3: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
2: उसके रैपर
3: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10-15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
2: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
3: #garbagecafe सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
2: जापान कोरिया यहां से भी
3: सभी जगह
2: प्रशंसा आई थी।
3: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
2: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवमंच।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: युवमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि युवमंच कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं, तो आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी को जानकारी देने के लिए। तो आज फिर हम आप सभी को जानकारी देंगे महाराजा रंजीत सिंह जी की पुण्यतिथि के बारे में, और साथ ही कार्यक्रम में मनोरंजन भी हम आप सभी का करवाएंगे फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह की पुण्यतिथि हर साल 27 जून को मनाई जाती है। देखिए जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का नाम इसमें ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं देखिए 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था इन्होंने, और 40 वर्षों तक के अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं फटकने दिया। बता दें कि दशकों रंजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया था, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। देखिए महाराजा रंजीत सिंह का जन्म महा सिंह और राज कौर के परिवार में पंजाब के गुंजरवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वे 12 साल के थे दोस्तों, तभी उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बंटा हुआ था। इनको मिसल कहा जाता था और इन मिसल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। बता दें कि रंजीत सिंह के पिता महा सिंह के वो कमांडर थे और जिसका मुख्यालय गुंजरवाला में था। देखिए महाराजा रंजीत सिंह ने अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की थी और उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों जब वे किले के मुख्य द्वार पर प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी के साथ सलामी दी गई। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। बता दें कि गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताज पोशी संपन्न कराई और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने ये उपाधि भी हासिल कर ली। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य से मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासन कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा कर लिया था। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम में जानकारी हम आप सभी को और भी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए छोटा सा लेते हैं अंतराल, और अंतराल के बाद सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
10: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
9: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर,
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: युवमंच कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। युवा दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं नर्सिंग क्षेत्र में तेजी से बढ़ती नौकरियों के बारे में। देखिए, यदि आप 12वीं भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण हैं, तो BSc नर्सिंग एक अच्छा विकल्प आप सभी के लिए हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपने अभी अभी भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण की है और एक सुरक्षित तथा सार्थक करियर की तलाश में आप सभी हैं, तो BSc नर्सिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। देखिए, आज के समय में कुशल नर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है, न केवल भारत में बल्कि कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। बता दें दोस्तों कि 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है और भारत के शीर्ष संस्थानों में प्रवेश के लिए MS, NEET, UGC और PGIMIR या राज्य स्तरीय नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो और 4 वर्षीय कोर्स में 6 महीने की व्यवहारिक इंटर्नशिप शामिल होती है, इसे किसी अच्छे मल्टी स्पेशलिटी और अस्पताल में करें ताकि असली मरीजों को संभालने का अनुभव मिले। कोर्स पूरा होने के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं और इसके बिना आप कानूनी रूप से नर्स के रूप में अभ्यास नहीं कर सकती हैं। बता दें कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों का विस्तार आयुष्मान भारत एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और ICU ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर यूनिवर्सिटीज की स्थापना, डिजिटल हेल्थ एवं टेली मेडिकल सेवाओं का विस्तार और किया जा रहा है। इन पहलों के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संस्थान की मांग लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, विशेष रूप से नर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यही कारण है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक रिक्तियां नर्सिंग कैंडर में ही निकाली जा रही हैं। और देखिए, BSc नर्सिंग के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कई करियर के अवसर उपलब्ध हैं। सरकारी क्षेत्र में आपको ESIC केंद्रीय अस्पताल और मेन नौकरी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि वेतन की बात करें तो फ्रेशर को लगभग 25,000 रुपये और 30,000 और सरकारी अस्पतालों में शुरुआती वेतन लगभग रुपये 70,000 प्रतिमाह तक हो सकते हैं। युवा दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि कम वर्षीय शुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाओं के कारण ये देश के प्रमुख नर्सिंग कार्यक्रमों में से एक है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
5: जल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू एचपी यूनिवर्सिटी,
5: यूजीसी से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: बदलो बदलो, आदत बदलो।
10: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
9: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर

0: जी, गाने के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम युग मंच में। युवा दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए, सोच बदलनी है तो जीवन अपने आप ही बदल जाता है। बता दें कि देखिए, हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोचना इंसान कभी बंद नहीं कर सकता, सोच से जीवन चलता है। जी बिल्कुल, सोच बदलो तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। देखिए, सकारात्मक या रचनात्मक सोच होगी तो जीवन में भी उसी तरह से नतीजे प्राप्त होते रहेंगे, जो बेहद सुखद भी होंगे। युवा दोस्तों, जीवन एक बहती नाव है, उसमें हर कोई सवार है। मुश्किल हालात होने पर भी जब आप जीवन की नाव को पार लगा लेते हैं ना, तो इसमें आपके सोच की अहम भूमिका होती है, वरना आप कब के डूब गए होते। जी बिल्कुल, सोचना हमारे वश में है, इसीलिए जीवन को बदलना भी हमारे वश में है। फिर देरी कैसी, सोच बदलो, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, आप स्वयं इसके रचनाकार हैं।
1: आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो इसी के साथ आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच आकाशवाणी का। ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
2: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी बीडीसी, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ा और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुखू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

0: हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। 16 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों की झूमते तराने लेकर हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती आपके साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म है मैंने प्यार किया।

श्रोताओं, अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं दिलवाली फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी को और कार्यक्रम चल रहा है सफ़र सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम में समय है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
9: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
10: कश्मीरी सन्स ड्वेलर्स।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, अभी आपने आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म शौकीन का ये गीत सुना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक व साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आशिक आवारा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
8: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस पहले भक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म क्षत्रिय से। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति व साथियों की।

श्रोताओं, अभी आपने मोहम्मद रफ़ी व नरेंद्र चंचल की आवाज़ों में फिल्म आशा का ये भक्ति गीत सुना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बिग ब्रदर से आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत आकाशवाणी का। ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रौनका ग्राय दिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियाँ। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
5: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
6: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर।
1: श्रोताओं, शाम के 7:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज बड़ा बंगाल में लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बड़ा बंगाल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए गए राजमाह पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिला में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
2: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद व स्थानीय निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के इस रवैये का विरोध करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। राणा ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन चुनावों में देरी किस आधार पर और किस उद्देश्य से की जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। ताजा समाचारों के लिए

0: अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर कदम बढ़ाए हैं और मध्य पूर्व व खाड़ी के देश हिमाचल के फलों के लिए एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। उन्होंने चंबा जिले में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि जिले में विद्युत नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, BDC और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
1: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी BDC, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया। और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुखू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत IGMC ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
2: ठोडा है हमारा ये कल्चर पुराना, हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये ठोडा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से तो तीर कमान से एक दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11-11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
0: चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के रात्रि के 8 बजने को है, अब से लेकर रात्रि 8:44।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था।

उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी इसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं,

0: यहां देखा तो दो कला राज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था किला। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, जहां पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, सेवक ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, मगर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव योग उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही सुराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह ना थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ये सभी बातें वहां लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मा घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफ

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9 बजे सुनिएगा News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
4: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले

0: पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति

0: बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanic

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज़ ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन

राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: चढ़ कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया

ठीक इसी तरह से बोनजोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रंगे गजल। रंगी गजल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत गुलाम अली की इस गजल के साथ।

इस नज़र ने उस नज़र से बात कर ली, रहे खामोश मगर फिर भी बात कर ली। जब मोहब्बत की फिज़ा को खुश पाया तो दोनों निगाहों ने रो रो कर बरसात कर ली।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंगी गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गज़ल। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर आपके रेडियो सेट पर।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को आरती की राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आप बने रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ।

तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें चली मेरी हर सांस पर नाम तुम्हारा हो।

ये नशा था तेरे प्यार का जिसमें हम खो गए, तुम्हें भी पता नहीं चला कि कब हम तुम्हारे हो गए।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो दोस्त आरती के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क AI

0: आईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के दो गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।